ब्रह्मा पिंडे सो ब्रह्मन कहिया जय अनतिन हर लिवलाय सतगुर पूछे सच संजमक मावे हो मैं रोग तिस जाए ब्रह्मा पिंडे सो ब्रह्मन कहिया जय अनतिन हर लिवलाए सतगुर पूछे सच संजमक मावे हो मैं रोग तिस जाए हर गुण गावे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए इस जुग में ही को विरला ब्रह्म ज्ञानी जय हो मैं मेटस माई